0: असंख जप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ जोग मन रहे उदास
0: असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार
1: असंख सूर मोह पखसार असंख मोन लिबलाए तार
0: कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार
1: जो तुद भावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार
0: असंख मूर्ख अंध कोर असंख चोर हराम खोर
1: असंख अमर कर जाहे जोर असंख गल वड हत्या
0: असंख पापी पाप कर जाहे असंख कुड़ी यार कूड़े फेराहे
1: असंख मलेश मल पखाहे असंख निंदक सिर करे पार
0: नानक नीच कहे विचार बारिया न जावा एक बार
1: जो तुद भावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार
0: असंख नाव असंख साव अगम अगम असंख लो
1: असंख कहे सिर पार होए अखरी नाम अखरी सालाहा अखरी ज्ञान गीत गुण गाहा
0: अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान
1: जिने लिखे ते सिर नाहे जे फरमाए तिप ते पाहे
0: जेता कीता तेता नाम बिन नाम है नाही को थाओ
1: कुदरत कवन कहा विचार वारिया न जावा एक बार
0: जो तुद पावे साई पलीकार तू सदा सलामत निरंकार
1: भरिया हाथ पैर तन देहे पानी तो तै त्रस्खे
0: मूत पलीती कपड़ होए दे साव बून लिये ओ तो है
1: भरिया मत पापा कै संग ओ तो पहना वै कै रंग
0: पुनी पापी आखन नाही कर कर करना लिख ले जाहो
1: आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवो जाहो
0: तीर्थ तप दयादत दान जेको पावे तिल का मान
1: सुनिया मनिया मन की ता पाओ अंतर गति रत मल नाओ
0: सब गुण तेरे में नाही कोए बैन गुण कीते भगत न होए
1: स्वास्थ बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ
0: कवन सुबेला वक्त कवन कवन थित कवन बार
1: कवन सरुति माह कवन ज

0: जाए जिन के राम बसे मन माहे
1: जिथे भक्त बसे के लोग करे आनंद सचा मन सोए
0: सच खंड बसे निरंकार कर कर वेखे नजर निहाल
1: जिथे खंड मंडल वर पंड जे को कथे तंतना अंत
0: जिथे लो लो आकार जिब जिब हुकम तिवे तिव कार
1: वेखे विकसे कर विचार नानक कथना करड़ा सार
0: जत पहारा धीरज सुनियार अहरण मत बेद हथियार
1: भौखला अगन तपताओ भांडा भाव अमृत ढाल घड़िए शब्द

0: नमो सर्व जांत्रं
1: नमो सर्व दृशं नमो सर्व कृशं नमो सर्व रंगे तरपंगी अनंगे
0: नमो जीव जीवं नो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे
1: कृपालं स्वरूपे को कर्मंग प्रणासी सदा सर्वदा हृदय सदंग निवासी चरपट शांतवा प्रसाद
0: अमृत कर्मे अमृत धर्मे खल जोगी तल भोगे
1: अचल राजे अटल साजे अखल धर्मंग लख कर्मंग
0: दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने
1: सर्वं प्राणिंग सर्वं त्राणिंग सर्वं भुक्ता सर्वं जुक्ता
0: सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले
1: वाल शंतवा प्रसाद
0: आद रूप नाद मूर्जोन पुरख पार
1: सर्व मातिर मान देव पेव आद उदार
0: सर्व बालक सर्व कालक सर्व को

0: खेल खेला खेल खेलन अंत को फिर एक
1: न जाने जे बेदर कतेब
0: रूप रंग न जात पात सु जान ही कह जेब
1: आत्मात न जात जाकर जन मरण विहीन
0: चक्कर बकर फिरे चतुर चक मान ही पुरतीन
1: लोग के बिखे जग जापी जे जाप
0: आद देव नाद मूरत था प्यो सबे जय थाप
1: परम रूपनी मूर्त पूर्ण पुरख पार जगत काल पुरखा देश
0: परम रहत पूते लख पेश
1: राग न रंग जाके जात पात न नाम
0: गंजन दुष्ट पंजन मुक्त दायक काम
1: आप रूप अमीका नौ सदीक पुरख अवधूत
0: गंजन सर्व पंजन आद रूप असूत
1: भांग नात्मिक पुरख पार
0: सर्व लायक सर्व कायक सर्व को प्रित पार
1: सर्व गंता सर्व अंता सर्व ते अनपीख
0: सर्व शास्त्र न जाने जह रूप रंग अर रेख
1: वेद प्राण जाकर नित पाखत नित
0: ओट सिमरत प्राण

0: दूतांगा भव अंगतमत पार गुण गान उदार
1: मुरगर प्रणाम निरपय निकाम अद्भुत प्रचंड मित गत खंड
0: आलस्य कर्म दृश्य धर्म सर्वा पर नंडन बड
1: चाचरी संत व प्रसाद
0: गोविंदे मुकंदे उदारी अपारी
1: हरियम करियम ने नामे अकामे पुचंग पयात छंद
0: जत चक्र करता जत चक्र हरता जत चक्र दानी जत चक्र जाने
1: चतर चक्र वर्ती चतर चक्र पर्ती चतर चक्र पाले चतर चक्र काले
0: जत चक्र पास जत चक्र वास जत चक्र माने जत चक्र दाने
1: चाचरी छंद
0: न सत्र न मित्र न परम न पितर
1: न कर्मंग न काये अजन्मंग अजाये
0: न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र
1: वर्तिसै अदिसै अदृसै अकृसै भगवती संत व प्रसाद कत्ते
0: आशीष दिसै के आप पिज पिसै के आगंज कर्म के आप पंज परम
1: के आप पिज लोक के आदित्य सुख के अब दूत वरने के वे भूत करने
0: के राजन प्रभा के धर्म तो जाए के आशुक वरने के सर्वा परने
1: के जतन कृति है के शत्रंग क्षत्रि है के

0: के सर्वंग कली है के सर्वंग दली है
1: के सर्वतर माने के सर्वतर दाने के सर्वतर गौना के सर्वतर पौना है
0: के सर्वतर देश है के सर्वतर भेष है के सर्वतर राज्य है के सर्वतर साज है
1: के सर्वतर दीना के सर्वतर लीना के सर्वतर जाहु के सर्वतर पाहु
0: के सर्वतर देश है के सर्वतर भेष है के सर्वतर काल है के सर्वतर पाल है
1: के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पीखी के सर्वतर पीखी
0: के सर्वतर काज है के सर्वतर राज है के सर्वतर सुख है के सर्वतर भूख है
1: के सर्वतर त्राण है के सर्वतर प्राण है के सर्वतर देश है के सर्वतर पीस है
0: के सर्वतर मानिए सदैव अंग प्रधानी है के सर्वतर जापी है के सर्वतर थापी है
1: के सर्वतर पान है के सर्वतर मान है के सर्वतर इंद्र है के सर्वतर चंद्र है
0: के सर्वंग कली में के परवंग फैली में के आकल अलामे के साहेब कलामे
1: वजूमत मामल रुजु है में सुसलामे सलिखत मुदामे
0: स्वरूप
1: है तरमोक्त भूत है प्रभुक्त प्रभा है सुजुक सुधा है
0: सदैवंग स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तो पराज है सदा सर्व साज है
1: समस्तो सलाम है सदैव काम निर्वास रूप है गाद अनूप है
0: ओंगाद रूप है अनाद स्वरूप अनंगी
1: अनामे तिरपंगी तिरकामे सुभंग सरभागी सर्वानुरागी
0: भुक्त स्वरूप है छिज है अछूत है के नरकंग पर नाश है पृथ्वी परवास है
1: निरुक्त प्रभा है सदा वंग सदा है भोग स्वरूप प्रजोक्त अनूप है
0: निरुक्त सदा है विभुक्त प्रभा है अनुक्त स्वरूप है प्रजुक्त अनूप है चाचरी छंद
1: अंग नांग पेख लेख है
0: कर्म है अकर्म है अनाद है जुगाद है
1: बह भूत तूत
0: अनास है उदास है अदंत है अबंध है
1: भक्त भ्रक्त नाश प्रकाश है
0: चिंत है सुनित है अलिख है अधिक है
1: लेख है पेख है टह है गह
0: है असंभ है अगंभ है अनिल है अनाद है
1: सुनत है सुनत है जात है आजाद है
0: चरपट शंत व प्रसाद
1: सर्वगंता सर्वंगंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता
0: सर्वंग हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणंग सर्वं त्राणंग
1: सर्वं कर्मंग सर्वं धर्मंग सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता
0: सावल शांत व प्रसाद
1: नव नरक नास्य सदैव प्रकाश्य अनंगं स्वरूपे भांगं भूते
0: परमाथं परमाथे सदा सर्व साथे अगाध स्वरूपे निर्वाद भूते
1: नाम मित्र भंगी तर काम निर्भंगी स्वरूपे सर्वंगी

0: परमेश्वर है, कल कारण है, सर्व कारण है,
1: त्रण है, जाके करण मन मान्य है, जग जान्य है,
0: सर्वंग पर है, सर्वंग कर है, सर्वस्य है, सर्वनाश्य है,
1: कर है, विसंग पर है, सर्वेश्वर है, जगतीश्वर है,
0: ब्रह्मंडस है, खल खंडस है, परते पर है, करुणा कर है,
1: जपा जप थपा थप कृता कृत अमृत अमृत है,
0: अमृता अमृत है, करुणा कृत है, कृता कृत है,

0: पंजन है, गंजन है, रे प्रतापन है, जप जापन है,
1: कृत सर्वकृत कर्ता कर है, हरता हर है,
0: परमात्म है, सर्वात्म है, आत्म बसे जस के जस है, पुचंग पयात चंद,
1: नमो सूर सूर्य, नमो चंद्र चंद्रे, नमो राज राजी, नमो इंद्र इंद्री,
0: नमो अंधकार, नमो तेज तजे, नमो वृंद वृंदे, नमो बीज बीजे,
1: नमो शांत रूपे, नमो परम तत्ंग तत्ंग स्वरूपे,
0: नमो जोग जोगे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो मंत्र मंत्रे, नमो ध्यान ध्याने,
1: नमो युद्ध युद्धे, नमो ज्ञान ज्ञाने, नमो भोज भोजे, नमो पान पाने,
0: नमो कले कर्ता, नमो शांत रूपे, नमो इंद्र इंद्रे, अनादंग प्रभुते,
1: अलंकार रूपे, अलंकार अलंके, नमो आशास, नमो बंक बंके,
0: अभंगी स्वरूपे, अनंगी अनामे, तिरभंगी तिरकाले,

0: कृपा हनि हनुमानत महामूड कछु भेद न जानत
1: महादेव को कहत सदा शिव निरंकार का चीनत नह पेव
0: आप अपनी बत है जीती वर्णत पहन पहन तुहि तेती
1: तुमरा लखान जाए पसारा केहवे सजा प्रथम संसारा
0: एक रूप अनूप स्वरूप रंक भयो राव कई भूपा
1: अंडज जे रज से तज किली उत्बुज खान बहु रच देली
0: कहु फूल राजा हो बैठा कहु सिमट भयो शंकर कैठा
1: सगरी सिष्ट दिखा
0: अबरचा मेरी तुम करो सिखो बार सिख संगरो तब शरणी परितन के दुष्ट दुख दो मरे
1: पक परे तिहारे तिनके तुम संकट सब टारे
0: जो कल को एक बार तय है ताके कारण घटने है
1: हुए ताही सब काला दुष्ट रिष्ट ने तत्काला
0: कृपा दृष्ट तन जाए निहर हो ताके ताव तनक मोहर हो
1: रेत सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट शाश सब सके ना कोई
0: एक बार जंतु मैं संभारा काल पा

0: राम कली महला तीजा आनंद एको ओंकार सतगुरु प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया
1: सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां
0: राग रतन परवार परियां शब्द गावे।

प्रभु का सिमरन साध के संग सर्व निदान नानक रंग प्रभु के सिमरन रिद सिद्ध नौ निद प्रभु के सिमरन ज्ञान ध्यान तत् बुद्ध प्रभु के सिमरन जप तप पूजा प्रभु के सिमरन बिनसे दूजा प्रभु के सिमरन तीर्थ शनानी प्रभु के सिमरन दरगाह मानी प्रभु कै सिमरन होए सो भला प्रभु कै सिमरन सो फल फला से सिमरै जिने आप समराए नानक ताकै लागू पाए प्रभु का सिमरन सब ते ऊंचा प्रभु कै सिमरन उदरे मूचा प्रभु कै सिमरन तृष्णा बूझै प्रभु कै सिमरन सबकी सूझै प्रभु कै सिमरन नाहीं जम त्रासा प्रभु कै सिमरन पूर्ण आसा प्रभु कै सिमरन मन की मल जाए अमृत नाम रिद माहे समाए प्रभु जी बसै साध की रसना नानक जन का दासम दसना प्रभु को सिमरै से तनवंती प्रभु को सिमरै से पतवंती प्रभु को सिमरै से जन प्रवाण प्रभु को सिमरै से पुरख प्रधान प्रभु को सिमरै से बेमोहताजी प्रभु को सिमरै से सर्व के राजे प्रभु को सिमरै से सुखवासी प्रभु को सिमरै सदा विनाशी सिमरन ते लागे जिने आप दे अल्लाह नानक जन की मंगैर वाला प्रभु को सिमरै से पर उपकारी प्रभु को सिमरै तिन सद बलिहारी प्रभु को सिमरै से मुख सुहावे प्रभु को सिमरै तिन सुख बिहावै प्रभु को सिमरै तिन आत्म जीता प्रभु को सिमरै तिन निर्मल रीता प्रभु को सिमरै तिन अनंत कनेरे प्रभु को सिमरै बसे अर नेरे संत कृपा ते अंदिन जाग नानक सिमरन पूरै भाग प्रभु कै सिमरन कार्ज पूरे प्रभु कै सिमरन कबहू ना चूरे प्रभु कै सिमरन हर गुण बानी प्रभु कै सिमरन सहज समानी प्रभु कै सिमरन निश्चल आसन प्रभु कै सिमरन कमल विघासन प्रभु कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभु सिमरन कांत न पार सिमरे सी जन जन को प्रभु मैया नानक तिन जन शरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए अर सिमरन लग बेद उपाए अर सिमरन पय सिद्ध जति दाते अर सिमरन नीचाउ कुंठ जाते अर सिमरन तारी सब धरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन कियो सगले अकारा हर सिमरन मैं आप निरंकारा कर कृपा जसे आप बुझाया नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया श्लोक दीन दर्द दुख पंजना कटकट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ अष्टपदी जय मात पिता सुतमीत न पाई मनुआ नाम तेरा संग सहाई जय मां प्यान दूत जम दल है तै केवल नाम संग तेरा चल है जय मुश्किल हुए अत भारी हर को नाम किन माए उधारी अनक पुण्य चरण करत नहीं तरै हर को नाम कूट पाप पर हरै गुरमुख नाम जपो मन मेरे नानक पावो सुख कनेरे सकल सृष्ट को राजा दुखी हर का नाम जप तोए सुखिया लाख करोड़ी बंद ना परै हर का नाम जप निस्तरै अनक माया रंग तिख ना बुझावै हर का नाम जपता गावै जे मार गे उजात अकेला तैर नाम संग हो सोहेला ऐसा नाम मन सदा त्याई है नानक गुरमुख परम गत पाई है छूट नाई कोट लख बाही नाम जब तै पार पराही अनक बिगन जे आए संगार हर का नाम तत्काल उधार है

हर हर जन कै ऊट स्थानी अर प्रताप जन वर न जानी ओतपोत जन हर रस राती सुन संवाद नाम रस माती आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त भव करे नानक जन संकेते तरे पार जाते वर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लथा नाम की महिमा संतरिद वसै संत प्रताप दुर्सव नसै संत का संग वडभागी पाई है संत की सेवा नाम ते आई है नाम तुलक शवर न होए नानक गुरमुख नाम पावै जन कोई सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्ब टंडोल पूजिश नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान जोग ब्यास करम तरम क्रिया सकल त्याग बन मध्य फिरे अनक प्रकार किए बहु जतना पुन दानों में बहु रतना शरीर कटाया मैं कर राती वर्त नेम करे बहु पाती

नानक कहु न सिजई बिन्ना वह पत जाय। अष्टपदी दस वसु ले पाछे पावै एक बस कारण बिखोट गवावै एक भी ना दे दस भी हिरले तो मूड़ा को कहाँ करे जिस ठाकर सो नाही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। जाकै मन लागा प्रभ मीठा सर्व सुखता मन उठा जिसन अपना हुक्म मनाया सर्व दुख नानक तिन पाया अगणत सौ अपनी दे रास कात पीरत बरतैन दो लास। हो अपनी मान किश बहुर साल ले अज्ञानी मन रूस करे अपनी प्रतीता पी खोवै बौर उसका विश्वास न होवै। जिसकी बस ते साग्या राख है प्रभ की आग्या मन ने मत है उससे चौगुण करे निहाल। नानक साहिब सरा दयाल अनक पात माया के हित सर प्रभुवत जान अनेत। बिरकी छाया सो रंगला वै बिन सो मन पछतावै जो दिसा सो चालन हार लपट रहो ते अंध अंधार बटाऊ सो जे लावै नेह ताक वाद न आवै केह मन हर के नाम की प्री सुखदाई कर नानक आप लै लाही। मिथ्या तन धन कुटुंब सुभाया मिथ्या उमे ममता माया मिथ्या राजमन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्ती अस्व वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया भीख हस्ता मिथ्या ध्रो मोह अभिमान मिथ्या उपसुपर करत गुमान। हस्तिर भगत साध की सरण नानक जप जप जी वैर के चरण मिथ्या सरवण पर निंदा सुनै मिथ्या अस्त पर दर्भ को हरै मिथ्या नेत्र पीड़ित पर तरिया रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बेकार को तावै मिथ्या मन पर लोभ लुभावै मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बासलित बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल दे नानक हर हर नाम लय। बिरथी सागत की यार जा साज बिना कहू वसूचा बिरथा नाम बिना तने अंध मुखावता कै दुर्गंध बिन सिमरन रैन बिरथा बेहाय मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरथी सब काम ज्यों किर पर के निरार्थ दाम। धन धन ते जंजे कट बस्यो हर नाउ नानकता कै बल बल जाऊं रात अवर किश अवर कमावत मनी प्रीत मुखो खंड लावत जन हर प्रभु प्रवीण बार पेख न काऊं पीन अवर उपदेश आप न करे आवत जावत जन मैं मरै। जिसके अंतर बसया निरंकार तिसकी सीख तरह संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नानक कुंजन चरण प्राता करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना की आपे मान आपे आप आप करतन बेरा किसे दूर जुनावत किसे बुझावत नेरा। उपाप सियानुप सगते रहत सबकी जाने आत्म की रहत जिस पावत सिलय लड़लाई थान सुरंतर समाये सो सेव जिस कृपा करी।

ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपति ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप हो जैसे जल में कमल लेप हो ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोक हो जैसे सूर सर्व को शोक ब्रह्म ज्ञानी कह दृष्ट समान जैसे राय रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कह तीर जी को जुम सुधा को खोद को चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी कह गुनाऊ नण जो भाव का सह सुभाव ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल न लागे जला ब्रह्म ज्ञानी के मन में प्रगास जैसे तारू पर आकाश ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान ब्रह्म ज्ञानी के नाय अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पय नण जिन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सल किरीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी जीना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी किछ पुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर रास ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाह ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाह ब्रह्म ज्ञानी का नाई धंधा ब्रह्म ज्ञानी लेतावत बंदा ब्रह्म ज्ञानी कह सुपला ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सकल उदार नानक ब्रह्म ज्ञानी जपै सकल संसार ब्रह्म ज्ञानी कह क्या रंग ब्रह्म ज्ञानी कह बसै प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी के नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा से जागत ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्यागत ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी के नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संगीता ब्रह्म ज्ञानी के अचिंत ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभाप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आ परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत ना है ब्रह्म ज्ञानी के सकल मन माहे ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए दाखर ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकर ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार ना पार ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता ब्रह्म ज्ञानी सजीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष विधाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपरात ब्रह्म ज्ञानी का सकल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक और तार है जो अंतरनाम सर मैं पेख्या भगवान निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है नानको पर सगल निस्तार अष्टपति मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत रंजन दर्स परत रूप न पेख्या नेत्र सादगी जल संसंग हित करना सुने काहू की निंदा सप्त जने आपसको मंदा गुर प्रसाद विख्या परहर है मन की बासना मन ते ठहरै इंद्रियत पंच दोख से राहत नानकोट मदे को ऐसा परस बैसनो सो जिस ऊपर सो परसन बिसन की माया ते होए पिन

निकेतन सारस्वती संजना मिल करो विचार एक समर नाम धार उपाव समित विचार उचन कम मारुतार करण कर्ण सुप्रभ सम्राट दृढ़ कर गौ नाम हरवात ए तन संचो भगवान संजना के निर्मल मानते एकाश राखो मन माय सर्व रोग नानक मिट जाए जिस तन को चार कुण रुड़ता वै सो तन हर सेवा ते पावे जिस कुण बचे में सो सुख साधु संग करे जिस सुभा को करे पड़ी करणी सा सो वजर के शरणी अनुगुवावी रोग न जाए रोग मृया रुख लाए सर्वन थान में हर नाम जहान जप नाम करके प्रवान मन प्रभु द्वार के नाय दा देव साव ते आवे ठाए ताको विघ्न लागे कोय जा कर देव से अरसोय कलता ती ठंडा हर नाओ समर समर सदा सुख पाओ भोगन से पूर्ण आस भगत पाया तुम बरगास तित घर जाए बसे अवनासी कहो नानक काटी जम फासी तत विचार कह जन साचा जन्म मरे सो का चोका चाव गुण मिटे प्रभु से व्याप साक्षण गुरुदेव यों रतन जन्म का हो उधार हर हर सिमर प्राण धारण पवन सुट नारे सिमर सासरे विचारे हर की भगत करो मन मीत हर के भगत करो मन मीत निर्मल तुम्हारो ची चरण गुण कौन माए जन्म जन्म के कलो जाए तत विचार कह जन साचा जन्म रे सो का चोका चावा गुण बड़े प्राप्त से व्याप्त अक्षण गुरुदेव रतन जन्म का हो उधार हर हर सिमर प्राण धार अणगु भावना चुटना रे सिमर सात वे विचारे हर की बद करो मन लाए मन पंचन नाम खुल पाए संगन चल सिरत न तू क्या लपटावे मूर्ख मन सो तुमीत क्रम वरवंता रे कौन तुम गौण सनाथा राज रंग मा विस्तार इनते को कुम छुटकारा सब सिर सवारी झूठा डम झूठ पा सारी जिन दे ते सु जन विज्ञान नाम विसार नानक विस्तार न गुर की मत तूले आने भगत बनो बोडू बसियाने हर की भगत करो मन मीत निर्मल तुम्हारो चे चरण कुमरा कुमन माए जन्म जन्म की किलिप जाए आप जपो अवरण नाम छुपाओ सुमन कैद रहत घर पाओ सर पो सर कुणाओ सर सुभा नानक गुण गाओ गुण गाओ त्रिउतर समैल बिन जाव में फैल हो चंद बस सुकुणाल सास ग्रह सन नाम सुमाल छाड़ श्याम सगली मन सा संग पावे सच धना हर पुंजी संत करो बिहाई सुख दरगह जयकार सर्व निरंतर को दया कहो नानक दा के मत सगले के को जापे को साला एक सिमर घूमने आए के गुण गाओ आनंद मन तन जापे एक भगवान।